0: धर्मै जुम्बे बहारा काटी जाती है एक एक काटी नासियो
1: साजन बिन्त समस्ता दाजो भाई मान्रो नामा ठेकारायो पन्नवस

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज। अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

सामुदायिक अभिम महीने में धोपलो 7 मेगा हर्ट बाटो मो बद्र प्रसाद साहब कोट आज विक्रम संबत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 5 तारीख ज्येष्ठ 22 गते शुक्रवार पंचमी तिथि अब स्तुति करूं।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजा भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

पानी घुमदाई एक दिन आई पर सरारी से आए पुखे ब्रह्मानी तारी दे मलाई बारी अहिले जान्छु भने थे जसाई

सद्मादिये न दही चोरे माखन चोरे चोरे चोरी साड़ी धर्मानंत पाप चोरे तारे भवदला पारी।